0: जी
1: हाँ जी, तो बस यही है। तो
2: जी, थैंक यू रिचा जी,
1: सत्रीकाल सबनों,
2: थैंक
1: ओम
2: यू,
1: जी जी,
2: थैंक यू,
1: सत्रीकाल जी, सत्रीकाल।
2: थैंक यू जी, धन्यवाद तुहाडा रामपाल जी, धन्यवाद, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। ते तुसीं जे अपने रिश्ते दे तुसीं भेजनी है अनाउंसमेंट, तो प्लीज़ तुसीं फिर ना उन्हूं फॉरमेट दे विच ही भेजो, टू द पॉइंट भेजो, जिन्ना का आपां क्या वा उन्ना की, बहुत एक्सट्रा सानूं तुसीं ना भेजो, वो फिर साडे लई होर ज़्यादा औखा हो जाता वा उन्हां सारियां चीज़ां नूं दसना करना, औखा मतलब दसना करना तो की हुंदा वा, औखा ये हो जाता वा भी लोड़ ही नहीं हुंदी, बाकी गल्लां बातां उन्नियां क तुसीं दसो जिन्नियां क शुरुआती समय दे विच चाहीदी हुंदियां दस पाउण दे लई, बाकी तो फिर तुसीं आपस दे विच गल्लबात कर ही लैणी। तो जे तुसीं भेजना तो हुणे हुणे भेज दो, एंड मूमेंट ते भी जे भेजोगे तो तां वी औखा हो जाणा साडे लई। ते मंगत सिंह जी कहिंदे ने कि सति श्री अकाल, मैं कहिंदे 1982 दे विच अपने सहुरे गया सी, उत्थे एक फोटोग्राफर मित्र सी, असीं तीन चार जने बैठे सी, मेरे लंबे वाल ते जूड़ा करके पग बन्नी हुई सी, वह फोटोग्राफर कहिंदा जे तुसीं वाल कटा देवो तो मैं तुहाडी फोटो फ्री करांगा। वाह, ते मैं वाल कटाते ते मेरी ये उस समय खिंची हुई फोटो है, घर आके बहुत गालां पईआं सी।
0: ओहरी
2: गालां दी तुहाडी याद नाल जुड़ी रहेगी ना। फोटो उस समय आई थिंक बहुत वड्डी गल होगी,
0: बिल्कुल हाँ,
2: हर एक नूं नहीं नसीब हुंदी होगी, 80 दे आस पास मैनूं लगदा भी होगा भी काफ़ी महंगा है काम, इन्ना सस्ता नहीं हो।
0: जिहड़ी पुरानी आपां 80s 90s वाली अगर फिल्मां देखीए, ओह नहीं कि मतलब इदां दा कैमरा हुंदा सीगा, ट्राईपॉड ते लग्गे होए, ओह इक कपड़े दे नाल ओहदे विच मूंह पा के फोटोग्राफर
2: ना, नहीं हाथ पा के, अज भी हैगे पर अमृतसर ते उत्थे स्टेशन दे उत्ते अज भी हैगे, ते वापस ट्रेंड च आ रहे ने, हां ओह चीजां वापस ट्रेंड च आ रहीयां ने। ते इसे दे नाल ही आपां एक ब्रेक लैके वापसी करदे ने। आ रेडियो हां जी 1674 AM
3: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
4: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
5: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
3: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।

0: रेडीमेड गोल्ड डायमंड सिल्वर ज्वेलरी बनवा सकते हैं कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग फॉर मोर इनफो कॉल 0499-2535-45
1: किचन का स्टाइल डल लगता बाथरूम वैनिटी सिंपल जया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जी जे स्टोन मेसन पाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
2: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
3: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
4: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au
5: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजुर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
6: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Insurance.

0: जो हाँ जी 1674
1: हम थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा The smart choice. सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
3: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
3: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
5: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
5: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
6: हेलो मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हां जी 1674 AM
4: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है ओ मूवी जिने सब नु हसा हसा के लोटपोट कीता
7: कह रहे हो
4: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता
7: कह रहे हो
8: गिप्पी ग्रेवाल बिन्नू टिल्लो सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कह रही है
9: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया
4: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा

दो चार मिनट ही लेट हो रहे, वैसे जे तुसी हुन सिडनी स्टूडियो तो सुन रहे हैगे हो, जिहड़े मेलबर्न तो स्विच करके इधर आए ने, प्रोग्राम बकायदा ऑन टाइम हैगा, थोड़ा जिहा डिले टेक्निकली किता हैगा असी। सो तुसी हुन थोड़ी देर दे विच साडे नाल एक बार फिर तो जुड़ सकते हो। प्रोग्राम गाने कंटिन्यू चल रहे हैगे ने, तुसी करण औजला दा सुन लो, कराला मान दा सुन लो, पर उस तो बाद ना फिर आपा प्रोग्राम डीप टॉक लेके हो रहे हैं हाजिर।

0: power in the universe.
1: Radio Haji, 1674 AM.
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: चलो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
3: कह रहे हो
2: ओ मूवी जिदी चोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: कह रहे हो
4: गिप्पी ग्रेवाल बिन्नू टिन्नू सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा जिथे एडवोकेट टिन्नो फिर कह रही
5: है टिन्नो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नु हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
2: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
3: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
1: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
6: ते। Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
7: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनेना विच।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दियां वीजा लोड़ा लई इक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नूं 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। थोड़ा कोई हल करिए।
3: सोना चाहिदा?
4: भरोसा चाहिदा है?
3: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा? चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493

0: ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria apply. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
1: सोना चाहिदा
2: भरोसा चाहिदा
1: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट Point Cook, call 0493-536-042.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332502 ते।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: हीर दी डोली कुहारा ने चुक ली सहदे खेड़े दे मन खुशियां रांझे दे पले रोने रांझा बेबस मजबूर हीर दी एक दिल दी पेतन सहेली ने हीर नू बोली मारी बेचारे चास नू रोंदा दे

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
2: सूरज देवता
1: की मतलब?
2: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
1: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई जां करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सबको आख है एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिए समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जे वड़ आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैलै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने।

तीरे सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत ताल, करिए शब्द सची टक्स।

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वी छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष्य कंस

चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आ भेज वेश के आगाज कर्म के आ भंज भरम के आ भेज लोक के आ दित सुख के अवधूत वर्ण के बेपूत करने के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आसुक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानिए के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख दुदा में गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तों पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चात्री छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम परनाश है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम परनाश है बिस्तल निवास है
कि सर्वगवन है कि हमेशा लोवन है, तमाम तमीज है, समस्त रोदीस है,

परंग परंग ईस है समस्त लदीस है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है गजुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुबास है के अजब स्वरूप है

गुणगान मुदाम हर बार अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगान प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी।

अंठन अपार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जगजानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है भव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए श्राव समूह सिदान के देख फिरियो करजोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पुजान कपूत नात बिचारे इते पै तो कांपे अंधकुनांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पवेख पवान के पुवत कौन गुने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जा

0: बोलिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे बैस बतायो साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा अनंज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किच पेद न जानत महादेव को कह सदा शिव नंकार कार चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तजकीनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फूर राजा है बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न

0: अंतर आत्मै समाले, आप छड सदा रह परनै गुरबिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए।
1: जे को गुर तेवे मुख होवे बिन सतगुरु।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर

जैसी अगन उदम है तैसी वार माया, माया अगन सब को जई करता है खेल लचाया, जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया, कह नानक

वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोद अंदर धन धन सोडी सुल्तान चौथे सतगुरु साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी तो आए हुए अमृत बचन जिन्हां दी निता प्रति आप गुर शब्द की सांझ करन वास्ते गुरद्वारा दीवान हाल मंजी साहब संगत जी ए धन श्री गुरु पंजवें सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी का पावन पवित्र अस्थान गुरद्वारा मंजी साहब। गुरु अर्जन साहब महाराज जी के दो अस्थान मंजी साहब श्री अमृतसर शहर विच ने। एक जिथे नेता प्रति आप जी बैठे हो कथा सरवण करदे हो, दूसरा अस्थान रामसर दे नेड़े गुरद्वारा मंजी साहब। इस अस्थान ते 12 माह दी बाणी धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने उच्चारण कीती। उस अस्थान ते धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने श्री सुखमणी साहब जी दी बाणी उच्चारण कीती। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो अज दा अमृत बचन सानू बख्शिश कीता है इहदी सांझ करन वास्ते मन बिरतियां नू एकागर करिए ताकि अज दे इस अमृत बचन दी कोई किणका साडी सुरत विच साडे हिरदे विच साडे जिहन विच वस जावे। सारियां सिख संगतां प्रेम विच भिज के सह पिता नू सीस झुका के याद करदिआं होइआं एक वरा बुलंद आवाज विच आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक वरा फिर आखो जी बुलंद आवाज विच आखियो सत

अंदर जाना। जदों असीं मुंह तो बोलांगे नहीं तो बोले तक ही सीमित रह जाएगा जे असीं कन्नां नाल वाहिगुरु नहीं सुनिया। जदों जपना है तो नाल असीं कन्नां नाल सुनना भी है। सत

पूरे गुरु ने कृपा की नाम दृढ़ कराया, पर दृढ़ किवें आ जी? पूरे गुरु ने कृपा करो की जिनी देर तक टकौसले छड़दे रहे गुरु तो आकी होए रहे उन्नी देर तक कृपा नहीं। जदो पांच प्यारे साहबान दे पेश होके जदो गुरु दे चरणा च हाजिर होके पांच प्यारे साहबान दे कोल हाजिर होए ते पांच प्यारे साहबान ने फिर अमृत दे पांच चोले मुख विच पाए, पांच छटे अखां विच पाए, पांच सीस विच पाए ते क्या बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। ए जदो जपाया ते फिर पांच प्यारे साहबान ने फिर किया सत

का दास। आप करते हैं दर्शन हर रोज अपने कानों के माध्यम से, जो लेकर आता है आपका ये दास हमारे शास्त्रों, आचार्यों और संतों की वाणी से। भगवद गीता कहती है कि जो जब जब होना है वो आपके जीवन में उसी समय होकर रहता है, ना समय से पहले और ना किस्मत से ज्यादा आपको मिलने वाला है। हम भाग्यशाली हैं जो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं, और केवल इसी मानव देह में हम भगवान की भक्ति, उनका स्मरण, उनका कीर्तन कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए, क्या पशु पक्षी जानवर वृक्ष, क्या ये सब सभी भक्तिपूर्ण कर्म कर सकते हैं? नहीं ना। तो इस मानव जीवन में हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए, भगवान की भक्ति में लगते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को उनका क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए उपदेश देते हैं। यानी हम गृहस्थ हैं, हमें घर में रहकर अपने परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को केंद्र में रखना है। भगवान की शरण में जाने के लिए आपके कानों में आगे आ रहे हैं ये मधुर मधुर भजन। आप इसका आनंद लीजिए। मैं छोटे से अंतराल के बाद फिर जुड़ता हूं आपके साथ। आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tirefors.com.au।
2: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
3: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
4: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334 6-5-4-9-2।

आप हैं पुण्य दर्शन के साथ और मैं हूं आपका दास। हम इतनी मॉडर्न मशीनों के युग में रहने के बावजूद, सुख सुविधा हर ऐशो आराम होने के बावजूद भी खुश नहीं हैं। हाँ, कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि खुश तो हैं, हमसे ज्यादा खुश कौन है। किंतु हमारे आपके जीवन में कहीं ना कहीं कमी तो रह जाती है। कुछ मिलकर हम संतोष भरा जीवन नहीं जी पा रहे, जिसके लिए वास्तव में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक बार एक रात को एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था। उसकी दुकान पर अचानक एक कुत्ता अपने मुंह में एक टोकरी पकड़े आया। दुकानदार ने देखा, टोकरी में एक स्लिप और कैश पड़ा था। दुकानदार ने स्लिप पढ़ी, जिसमें राशन लिखा था। राशन पैक कर उसकी टोकरी में रख दिया। कुत्ते ने टोकरी उठाई और चल दिया। दुकानदार ने झट से अपनी दुकान बंद की और कुत्ते के पीछे बड़ी जिज्ञासा से चलने लगा। आखिर इतना समझदार कुत्ता किसका है? कौन है इसका मालिक? कुत्ता एक बस स्टॉप पर जाकर रुक गया। बस आई, कुत्ता उसमें चढ़ा और अपने पट्टे को कंडक्टर के पास कर दिया, जहां उसका स्टॉपेज लिखा था और टिकट के पैसे भी। बस चलती रही, कितने स्टॉपेज आते रहे, लेकिन कुत्ता नहीं उतरा। किंतु जैसे ही कुत्ते का स्टॉपेज आया, कुत्ता स्वयं उतरा और उसके पीछे दुकानदार भी उतर गया। अब कुत्ता धीरे धीरे चलने लगा और जिसके पीछे थोड़ी दूरी पर वो दुकानदार भी चलने लगा। कुत्ता एक घर के बाहर जाकर रुक गया। आगे क्या क्या होना है यह जानकर आप भी दंग रह जाओगे। मैं यूं गया यूं आया। आप सुनते रहिए पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दास। तो अपने मुंह में राशन की टोकरी लिए बस पकड़कर वो समझदार कुत्ता एक घर के बाहर आकर रुक गया। उसके पीछे वो दुकानदार भी था जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था और जानना चाहता था कि इतने इंटेलिजेंट डॉगी का मालिक कौन है। कुत्ते ने मुंह की टोकरी नीचे रखी और भौंकने लगा। काफी देर भौंकने के बाद वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर डोरबेल बजाने लगा। ऐसा 3-4 बार किया तो अंदर से एक व्यक्ति आया। दरवाजा खोलते ही कुत्ते की पिटाई डंडे से करने लगा। वो जो दूर खड़ा दुकानदार था उससे रहा नहीं गया और वो तुरंत कुत्ते के मालिक पर आकर गुस्सा होने लगा और बोला, कमाल के व्यक्ति हो आप। आप अपने इस इतने समझदार कुत्ते को डंडे से पीट रहे हो। मालिक बोला, खाक समझदार है, ये नालायक आज दरवाजे की चाबी लेकर नहीं गया। बार बार घंटी और भौंकने से मेरी सारी नींद डिस्टर्ब कर दी इस कुत्ते ने। तो देखा, यही हो रहा है आज की लाइफ में हमारे साथ। आप किसी के लिए चाहे जितना अच्छे से अच्छा काम कर लो, 10 काम किए उसके फायदे के लिए, किंतु अगर 1 नहीं किया तो आप बुरे हो। 10 बातें सामने वाले की मान ली या उनके मन की किंतु 1 बात नहीं मानी तो आप बेकार हो, कामचोर हो। और ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है इस भौतिक जगत में, क्योंकि अपेक्षा आप जितनी दूसरों से करोगे उतना ही दुख का कारण बनेंगे। वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, बॉस हो, नौकर हो, बच्चे हो, बीवी हो, तो क्या करें। प्रश्न तो बनता है, इस भौतिक जगत में एंड रिजल्ट को मायने दिया जाता है, आपने कितना प्रयास किया उस पर नहीं। किंतु अध्यात्म जगत में भगवान केवल आपके प्रेम से, श्रद्धा से किए गए प्रयासों को देखकर ही अपनी कृपा बरसा देते हैं। आप केवल प्रेम से एक तुलसी का पत्ता अर्पित तो कर दो, ये भगवान के आगे माथा तो टेक लो, भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज के लिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
1: एक अजिही दुनिया जिथे जिराफ हुण सब तो उच्चे जानवर नहीं हन। ज़ूज विक्टोरिया मान नाल चिड़िया घर विच डायनासोर नूं पेश करदा है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। तीन चिड़िया घरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोर दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार होवो। मेलबर्न चिड़िया घर, वेरी बी ओपन रेंज चिड़िया घर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नूं जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हन। आज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ।
2: भैन जी की हाल है पिट दर्द दा?
3: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
2: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना। तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउन लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमार्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
6: सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

0: ड्रीम प्लान में कंपनी
1: नहीं खोलनी
0: खोलने
1: भाई। क्यों?
0: मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना है।
1: ओए होए होए होए होए
2: तो
1: होए,
2: फिर पिंडी
1: तो
2: तो
1: फिर
2: मेरे
1: तो
2: को पता ही
1: पिंडी दा तो यहाँ
2: करेगी,
1: पे कर लेना थे।
2: ये तो करेगी सर गया।
0: नहीं मैं हरे छोटे है के
1: अच्छा
2: तो पिंडी भी
1: छोटे।
2: छोटी है,
1: हाँ
2: ग्राउंड तो एक पिंडी का मेकअप करके एक फोटो बना के भेजी सानू वे
1: पहले
2: ही दे
1: दसो
2: दा।
1: नाल लेना, वो दी मैचिंग जी
2: हाँ
1: लीड़े कपड़े दी कर लांगे।
0: ओके
1: एक फोटो तो भेजो।
0: ओके फिर
1: ठीक है एक
0: मैं
1: मिनट।
0: और मुंह पे टेक्स्ट लाओगे, अख बनाओगे ते मुंह बनाओगे ते ओदे उत्ते मैं मेकअप लाओगे।
1: हाँ उन्हों
2: हाँ
1: चीरा दे के ना मसाला भर दो थोड़ा जा।
2: हाँ नहीं छेती करो, इस तो पहला साडा मूड पीला हो
1: ओके
2: जाए।
0: तो पिंडी द प्रा करेला हैगा
1: अच्छा
0: ते ओदा ओदी शर्ट का शर्ट ने जो उन्हें ने मिल नहीं करनी उन्हों प्याज चाहिए 5 किलो।
1: ओ अच्छा प्याज
2: पिंडी दा
1: 5 किलो। ओए
2: प्रा करेला अमरूद दा साला साले ताई कोड़े होंदे
0: हाँ
2: एडा कोड़ा ला करेला बनाया।
1: चलो।
0: ये पिंडी दी सिस्टर हैगी बीन्स
2: ओए होए होए।
0: ते ओदी शर्ट शर्टा ने जो उन्होंने मिलनी चाहिए उन्होंने ने जो मिलनी करनी उन्होंने नेट वाला सूट चाहिए वो भी चिट्टा।
2: तेरा
1: ओए
2: पड़ा
1: बल्ले
2: जो कोई
1: बल्ले
2: है
1: बल्ले। हाँ
2: ये डिमांड साढ़े पास होनी चाहिए डिमांड साढ़े।
1: अमरूद कहिंदा तां हैगा ही कलीचड़ियां लै लियां मैं।
2: ये हुण साडा अमरूद मुड़ा मोटा दा फायदा तुसीं चुकणा ना, तुसीं हुण कुड़ी दे के आसान करन डे।
1: चल।
0: पिंडी दी पुआ हैगी मेथी ते
1: ओए
0: ओडी शर्टा ने जो उन्होंने मिलनी करनी उन्हों आलू चाहिए 2 किलो।
1: ओ अच्छा आलू दा तो
2: मेथी
1: चेता ही
2: अल्लाह
1: नहीं सच ते।
2: आलू
1: ओ
2: तो भूल ही गए यार बस।
1: हाँ आलू दा चेता ही नहीं। आलू सच
0: पिंडी दी
1: हाडे
0: मासी हैगी पालक
1: आलू आलू पता साडे आले पासे हलवाई आ केटरिंग आलू दी आ। तुहाडे दिमाग च कोई आ गया पता नहीं नहीं
2: नहीं
1: ओ,
2: ओरे
1: कोई
2: ओरे
1: मकसद नहीं है दादा। हाँ नहीं आलू जेड़ा ना वो आलू केटरिंग करता वा ते प्याज तो उदे नाले ही हुंदा वा दोवें जने केटरिंग करते हैं।
2: लाल प्याज लाल प्याज नाल हुंदा।
1: हाँ लाल ही हुंदा ही पहला हुण वो चुल्हे ते कम कर करके वो हो गया चिट्टा जा। हुण लाल नहीं रहा लाल नहीं रहा हुण
2: लाल नहीं रहा
1: नहीं
2: कोई
1: नहीं हुण
2: गल।
1: नहीं। हाँ
2: ओहो
0: ओके पे पिंडी दे मासी है कि पालक ते ओनो टोकरी चाहिए मिलनी जरूर करनी
1: आ टोकरी चाहिए अहीं ते
2: कोई नहीं
1: रस्सी लियांदी
2: मास
1: है उहदे लई।
0: ओनो रस्सी नहीं
2: नहीं नहीं
0: चाहिए
2: ते साडे
1: रस्सी
2: साडे वालों
1: नहीं
2: इधर फुफड़ो दा सरों दा साग सरों
1: चल।
2: कराने मिलनी है
1: जब बाकी नेक्स्ट कल
0: पिंडी
1: बाकी कल कल कल फिर
2: अब सारे आज भी दसने
1: सारियां चीजां अज ही हो जानियां
2: पर वीर नहीं
0: करना। फिर मैं एक लास्ट वाली कह
1: हाँ
0: रही
1: जी हाँ जी
2: हाँ हाँ
1: हाँ जी।
0: हरमीत अंक सरबाला है गया अमरूद।
2: ओ मेनू टाइम ना गवा दे कि मैं लड़ाई ना खा जा।
1: सरबाला कि लाड़े नू दंदी ना वड़ दे।
0: नहीं दंदी पोड़े
1: ओके अहीं पता तुहानू पता अहीं ना अमरूद दे लई ड्रेस लई आ नैट वाली जिहड़ी हुंदी ना जिहड़ा ओ
2: हाँ
1: जिहड़ी ओ अजकल रखी हुंदी नी शॉप्स दे उत्ते उहनां नू चिट्टे रंग दी वाइट वाइट नैट वाली
2: सॉफ्ट जिहा
0: हाँ जी
2: ताकि
1: ओ वाली
2: डिगर
1: लई
2: सट्ट वी ना वज्जे ना
1: ओ वाली लई आ ओ रेड भी गया ना तां वी उहनू सट्ट नहीं लगनी।
0: फिट होगी
2: हाँ फिट
1: हाँ
2: होगी वो
1: ले
2: तो जिन्ना मर्जी फिट
1: वो तो पामे तो ही
2: फ्लेक्सिबल ड्रेस है ना।
1: और
0: ओके
1: हाँ थैंक यू पुत्र थैंक यू। नेक्स्ट कैसी बारी है
0: एशलिन
1: हाँ जी हाँ जी सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल अंकल जी ते लाम लाम अंकल
1: सत श्री अकाल। कुड़िये तेरे तेरी भी कोई हिस्सेदारी हैगी ब्याज की नहीं
0: हाँ जी
1: की तुही की कर रहे हो ब्याज
0: ਰਣਜੋਤ ਅੰਕਲ।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सबनु हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
4: पर टिलो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
3: कह रहे हो
2: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: कह रहे हो
4: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
5: पर टिलो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।